वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम सत्य नाम बोलो सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जी बोलो सत्य नाम नित्य नित्य जपिए तेरे नाम जी बोलो नित्य नित्य जपिए बोलो नित्य नित्य जप

0: Thank you. Thank you.
1: जब तेरी इनायत पर मेरी नजर जाती है, जब तेरी इनायत पर मेरी नजर जाती है, मेरे साईं, मेरे बाबा, मेरी आंख भर आती है। आप दे रहे हैं हमें इस कदर, आप दे रहे हैं हमें इस कदर कि हाथ दुआ में उठने से पहले ही मेरी झोली भर जाती है।

0: 貸した？貸した？貸した？
1: हे जगन्नाथा, हे बाबा प्रिया, हे भक्तवत्सला, यू हैव ट्रूली रिवील्ड योरसेल्फ। जयदेवा, योर सॉन्ग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोल।
2: जयदेवा, पार्डन माय वर्ड्स, आई वॉज ब्लाइंडेड बाय माय ईगो एंड इग्नोरेंस। इट वॉज इंडीड द लॉर्ड हु रिवील हिमसेल्फ टू यू। Please forgive me.
0: Who am I to forgive you? It is the Lord Himself, the unfathomable ocean of compassion.